0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा शानदार। जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बस एहो जी कृपा बनी रवे साडे सारयां दे उत्ते। प्रोग्राम सरब रेडियो तुसी सुन रहे हो, ते नाल दी नाल किसी नूं भी मॉर्गेज की भाल है, फस्ट या सैकेंड मॉर्गेज तुसी लभ रहे हो या सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट की लोड़ पै गई है, तो जी एन ई मॉर्गेजिस दे मयंक भटनागर जी नाल तुसी जरूर गलबात कर सकते हो। बड़े लंबे समय का एक्सपीरियंस इन्हां दे कोल है, तो बहुत वधिया नॉलेज रखते हैं मॉर्गेज की इंडस्ट्री दे विच। ते संपर्क नंबर 647-702-2023 647-702-2023 मयंक भटनागर जी।

सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आपको चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 कीजिए। कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी उनकी स्पेशल

देखने के लिए आपको optical.ca पे जाइए। आंखों चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 दाई देती पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: of nastiest abroad in Tough Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटम डॉलर 475 पर इन्हें साल के भरोसे विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल जी हम 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबिको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150 2131165।

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं, हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में जाते हैं, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9052 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अगर आप सोच रहे हैं मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच के मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को हिफाजत से पहुंचा देते हैं। तो एच के मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए, 416-452-7704, 416-452-7704 एच के मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं। और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को है, तो आपको जहां न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साद महमूद वहां पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इसको करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मंडी का गाय हुआ कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो लेट्स देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है
वो जरूर आपको निकाल लेगा भाई, सही है ना? तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। और ये गाना हमने इसी तरह

0: जीवन कहीं भी चहलता नहीं है, जीवन कहीं भी चहलता नहीं है, आज से तू चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है, मंजिल को फिर से गिरते गिरा है, तुझको चलना होगा,
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ पांच पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।
0: तो क्या रह जाए किनारा, तो क्या रह जाए किनारा, बड़ी ही देख समय की है सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चले चले रे सारा चंदा, चले चले रे सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बातें चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने बुरा है, मंदिर को कर से निगा है, तुमको चलना होगा,
1: तुमको
0: चलना होगा।
2: जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा, तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए एचके मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-7004। हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840, ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। जिनको लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है, तो आइए चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर, उन दोनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और

तो इनको नजर का जो भी इनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं इसी तरह। अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है बड़ा है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और उसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर का।

प्रोग्राम पसंद आ रहा हूँ। आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ, मैं आपके लिए पेश

तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5530 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चेयर, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन. स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

आख्यकवचस्य भैरवऋषिरनुचुण्डाः श्री पार्वती देवता देवितनय प्राप्तये विनियोगाः पार्वती मे गिरः पातु पत्रं पातु महेश्वरी भवानी नयने पातु प्रभो शङ्कर सुन्दरी मध्ये पातु महेशानी नितम्बं सुरमन्दिता गुरु गौरी सदा पातु कौशिकी जानयुग्मकम् बाहु द्वौ सुमुखी पातु पाणियुग्मं सुभाविनी पादौ ब्रह्ममयी पातु श्रवणे भुवनेश्वरी नासिके ललिता पातु कण्ठं त्रिपुरसुन्दरी रुद्राणीहृदयं पातु स्तनद्वन्द्वं महेश्वरी आपादमस्तकं पातु सर्वाङ्गं सर्वमङ्गला इति कथितं विप्रा कवचं दैव पूजितं पठित्वा धारयित्वा च

प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045। अगर आप सोच रहे हो मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच के मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को बाजार से पहुंचा देते हैं। तो एच के मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए, 416-452-6704 एच के मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, और तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं। और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन 26 को है, तो आपको जहाँ न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साध महमूद वहाँ पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इसको करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मंडी का गाय हुआ कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो लेट्स देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है वो जरूर आपको निकाल लेगा भी, सही है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं,

चले चले रे भारा दिया चले चले रे भारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तुम्हारा से चलता नहीं है। तू न चलेगा तो चलने गिरा है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। मंदिर को तब से
1: दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर जी कहते, और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी बांझी की जरूरत।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बात करता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने गुना है, मंदिर को करते तुमको चलना होगा।
1: जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए एचके मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-7604। हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1,00,000 डालर तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840, ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। जिनको लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है। तो आइए, चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर, उन दोनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और इधर

नजर का जो भी उनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं इसी तरह। अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितर पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है न्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1780 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है बहुत बड़ा है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और उसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर का।

प्रोग्राम पसंद आ रहा इस आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, तो एंजॉय द सॉन्ग।

0: करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोहणिया।

जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा एहो उपदेश मोको गुर दीना जीओ तेस स्यो ना लाइय हीत जाको किश नाही बीत अंत की बार ओह संग ना चले मन तन तू आराध हर के प्रीतम साद जाके संग तेरे बंधन छूट।

आवर आस काश पटल ना की जय। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपसोई, नानक जाको कृपा की जय। गोह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस काश पटल ना की जय। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपसोई,

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se Anup call karo. Phir to Anup koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kaalon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुनदे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-18-12 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने जी, उन्हां नूं निघी जी आया आखदे, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी वीकेंड शो ते 1 तों 2 सुणिया जांदा प्रोग्राम आ नजरिया। इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साडे नाल स्टूडियो 'च गल्लबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर हुंदे ने जी 416-233-7368 जां 8297 416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हो सकती हुंदी है। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गेल, प्रोग्राम तो बाद विच मेरे नाल कोई भी गलबात तुसी करनी है ते फिर 416-669-1379 ते कर सकते हुंदे हो। 416-669-1379 मेरा परसनल नंबर है। इसे नंबर ते प्रोग्राम दे संबंध विच जां रियल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी लैनी होवे ते लई जा सकती हुंदी है। सानू एक 2-बेडरूम दी जे कॉन्डोमीनियम अपार्टमेंट थोड़े पास वाटरलू यूनिवर्सिटी के आस पास अगर तुसी वेचना चाहते हो तो जरूर संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। और एक बड़ा शानदार ऑफिस स्पेस सैकेंड फ्लोर ते, ये भी ट्रेनमेड ड्राइव ते ही है जी, जो मैं पहला एडवरटाइज करता रहा वो साड़ी हुण ऑलरेडी रेंट ते चढ़ चुकी है। सो ये एक अनदर यूनिट, बड़ा शानदार यूनिट है भी। अगर तुसी अपना कोई भी प्रोफेशनल ऑफिस सैटअप करना होवे, एक क्लोज टू ड्रू रोड एंड ट्रेनमेड ड्राइव वाली साइड नू पैंदा। सो ब्रैमली एंड ड्रू रोड का इंटरसैक्शन नेड़े लगता है। सो अगर इस एरिए दे विच अपना कोई ऑफिस तुसी सैटअप करना, ये लिस्ट नहीं असी कीता, अगर तुसी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नाल संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जरूरत है, कोई 6000 प्लस स्क्वेयर फीट का एरिया होवे उसका, प्लस नाल उहदे पार्किंग स्पेस जिहड़ी तकरीबन 8 to 10 ट्रेलर पार्क होने की सुविधा होनी जरूरी है। वो कितने भी ब्रैम्पटन, मिससागा, बोल्टन, कैलडन के किसी भी हिस्से दे विच जां मिल्टन वाली साइड नूं भी अगर थोड़े पास है तो वो भी साडे नाल तुसीं संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। एक 4-bedroom 3 वॉशरूम का फ्री होल टाउन हाउस जो कि बोवे ड्राइव एंड हाईवे 410 के नेड़े रौना स्टोर के बिल्कुल नेड़े है जी। सो उसनों भी तुसी खरीदना होवे इन फ्यूचर तो वो भी सानू तुसी संपर्क कर सकते हो। 416-669

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: News Desk. Locally covered, nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। हरप्रीत सैनी जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून। अपने कोई भी गलबात करनी है नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दी थी पिछले दिन कि चार मुंडिया डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया। टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नूं डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जाए मई 9-2022 की गल है, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई कराउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्होंने ही उन्हां नूं कुट कुट के मारता। थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरन सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने। ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिपोर्ट कर दिता गया।

0: हां जी हरमन जी।
1: अरे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना की सबन।
0: मैं तां रंग दी गल करदा वी भाई, चंगा साबण वरत्या करो। हाँ। माड़े साबण ना रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओनी वरतना।
0: हां जी।
1: अच्छा जी, ए कपड़िया दे रंग उड़े दा ही नतीजा के अज इदा दा हो गया।
0: देखो
1: ओना ने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई, साडे पल्ले ता पाओ।
1: की
0: केड़िया नीतियां ने
1: ओना ने जो क्या है पहला गल ता सुन ला। तू
0: सुन लांगे, पहला गल ता दसो नीति केड़ी।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हाँ जी।
1: उन्हां दीयां जिन्नियां भी नीतियां ने
0: जी,
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा?
0: कौन करू?
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन?
1: सनी लियोन नहीं, सनी देओल।
0: अच्छा।
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला?
1: हां ते यार
0: वैसे मैनूं पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करवानी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ़दे नहीं, नाले नलके पटा लांगे, नाले प्रचार करा लेंगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेस ना हो, पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पैणा जी।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ दस फिर मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हुई लग गई तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो एक ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना काम करते होंगे दसी जरा मैंने
0: भावे कुछ भी देता
1: ऑलवेज बच्चे भी देख काम भी देख घर भी देख डॉलर भी देख सारा कुछ देखना है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ
1: भी
0: एक प्रोफेशनल प्रोफेशन मैनू चंगा लगा नहीं
1: हेलो
0: नाले मुक दी गल है भी जे अगले मेरे कोलो ये काम कराउणगे कल नु भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद च अगले पैसे ना देण फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा है बाकी गल्लां दी गल्लां
2: मेरे नाम जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने कोई गल नहीं पड़ती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तात्रे नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

स्पोर्ट्स मोहम्मद की जानिया ने अज ही आओ 170 गिल्डन रोड जिन नंबर 17 170 गिल्डन रोड जिन नंबर 17 टेलीफोन नंबर है 6473021322 347-302-1322 जेलो टायर

से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।